0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे
4: আকাশবাণীর মুম্বাই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান রিলে করে শোনানো হল আকাশবাণী কৈলাসহর। শুরু হচ্ছে লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান সুরের ভেলা।

0: कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है।
0: पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जात मऊन खाक कलक माओ शालथान कोनानी गौरपना नईमा चक शुरू शुरू शारीरिक शाल जोरानी कचंग थोथो शालो खाते तोनमानो खुम्बर बारनी आरिवो खरक नई आचुकलाई कक्षामा जरान तई खाते तोनमानो बिनी बेबा खामचकमा लांगमा तंगसक्नो खानी खोत्रोगो तई कैसे कक्लपनी मऊ खापंग आवार वांचुकमा आनी नखायु खाका खरगो काशाजाक इमांनी दफा मयालो कलक जाक खापंखा आनी हाफार आवारो मनी चाजाखा अम थै दुगो खातन जाक शाकमा तेसाने तेयो फुरसासा आथुकिरी नखाबाई हानी गरंग जाक मांगपिली सातों पिसा जाक पांटी तुई जंग जाक आमानी खुरीवो आपसा खिली जाक सासलांगनी वाइंग चकमाओ बायब साग बक्सा मचांग मनाई दी चेचे चाचा चेचे मा खरांग लोप सावई पेखक जाक हाबार मचांग जाक बुथाई कुमुन मा चानाई तीनी खानो शिचारे उ हा आमा चीनी चंबाग चंबाग चंखारो तीनी गुरंगई माइतांग माइरंग जाक गनांग हायुं गनांगई मुआनी हुई जाक जरा जराओ चंबाई नुक जाक खुग्रो बाई खाई खाई बाया तीनी नखा बाई हानी हुईजा कथमानी खापंग आवारो गलगे तीनी मानी जाजाक खापंग खा आनी तै कैसे कॉकलब नी मुन हादुलो शाहाई कुंगो बाहाई हा भाई गदाल जाक खापंग खा आनी हादुलो शाहाई कुंगो बाहाई तै बक तो योरो खेतोनी आरी हालो करंग जाक अम्थाई बुदुक बाई बागरों बारोई तै बान योगोई लामा कोबल जाक तै यो बाचाओई तैरम खरो कीतिं काशामा मेरी एक मारा कप्रमोई आरंग आबरसा लाइता गुंथु आशिनी जागुर आथुक आहला नगो किफिले बारिनी मिलो खागई संगुमु बर आबो बुसुब कथक खेतमाय बरफुरो दिबर खिरिंगो दागी जागई आमा बाई हारेप काशावई गांथिया आवंदरो संगई लाइता मस देंग देंगई खेतो लाई शाका आचुक लाई आमा आचई तई मिलुई हाबा काशावई याक याकुम सुई बागलाई सालाईमा आबो बुसुब कथक बुसुब तंथक दिपर जरानी थमा बाचालाई नगानानी थाइपुंग नोशी खागलाई तैशी फाक्सी दल बाक्सा चालाई आबो बुसुब थकलाई चेचे चेचेमा खोरां चिंग चिंग पुंगमा हाबार गनांगई बुसुक मचांगमा आफुरु हुजागई बुफां तलावो मुंतई मुन्यातई लिचो खागलाई पालबाक्सा सालाईमा दाबुरा तेरमानई लाथाबाई रिफ्रिज जागई हामा होयावई खाप्रुम खारमा दाबुग बुमानको पगुई दाबुग मन्याको पगुई आ जरा कहानी ककन आबहाई सालनी शारीरिक जराओ रसामरंग बाई फक्सी पापसी योक्सी बरई सुगुई कसई बोलायो बागलाई सालाईमा हुहु हाहा खुतै चरई अक्रा कुसु पालबाक्सा मिलुई चालाईमा आबो बुसुक बतं थक जरा बाई बेलाई गथक तै कैसे कक्लब निमु साक्नी सिनुई या प्रिसेदी हादुलुई हारपेक ब्याबाक पाई कबुल खा तैरमा पेरुई किसुलुई थांखा नाइसिनी नाई चैतो गई नाइखा सिन्दाई बाई सुखाकना बुसुक बचाइतो खा सुसिनी सुई शिमुकाग्लिया शाकंगाम बिनी खरगो मकलो नुकलिया मूसा खादुमा खाकामा फेमलकमा बांखा खरगो खुगो खाबाई खुपनी कगो करेखा मिलीमा फियाबा कुबुइन फियाबा कुबुइन हुई हुई तन्माया हायु निराइदा कुबुइ सिजागो सालचा हामजाकमा बहाइन हुई तन्मान्या हुईजाक हामजाकमा बाई सिमे जरालाई माइन्या नगजाक नाइन ब सालचाया सालचा गदमा जरा फेमलगमा रुई हामजाकमा तंग्रिक्या गथाङ अङ्गै जे सालनिसिमी बरक छिओ साइमानु बुझिना हारो मन्दन खापङखा रुई हामजाक सुखथाङका हुनै आ सालनिसिमी न बनन बरम रुना कमिरी नाइ तर तर नङ्गन कारै तमाङ्गला साइमान मानि सालनिसिमी न बनन साकनाइन्या खाइना सरंग थांगो जे शालो बरक निनिखा बेलमा सायमानो आ शालनि सिमिनो निनिखा बेलमानो बिनि साखथारनि बागै नन सामुंगो फुनांनाय हायनि कुथु कुबै अंखा जत बरक निनि हामजाकमानि बरम र नारेंगिया आसुक न वानसुक नाहारनाय निंबनो याकार

मांगला खने आबोनी बागई मोई तो नारक ठाई चीनी खा केबल मा रोकनो ज्योतनी बक बस कांगो शारानी कोई क्या ताई खा बाई हमजाक तोंफानो शाकनो आशक कलाई शाखे खाईनिया जे शाल निशिमिनो नो कलाई शाखे माननाई आ शाल निशिमिनो बरम रना कमिरे नाई आबोनी बागई शाकनी बरम नारकना शुरू थाई तमोनी हिनमाले हायो हमजाक मानी इसलाई शाकमांग शाकनी बरम नो गबांग बरम रो ताई कैसे कॉकलब नी मोंग कोबुई कॉक शाकनो कारे शाकनो आशे के हमजागे माननाई ताई के बुकुरी अकॉक नो कोबुई ताई कथार हायंगो गबांग मा बरक फुनोक नाई नो हमजागो हने पियाबा हारो बतंगनाई शाकथारमा खाबेलमा जरानांग पुरुषिमी सामगो फुनांगनाई फियाबा नी नांगमा जराओ शाक साम लगई हाक्साल ओं थांगनाय अकक्नो गुबुय नायदि नों जराओ आंजकय जरानो जरानो फुरंगनाय ननो हायंगनि गुबुय आबुनि बागै दखानो आशिबो रोइतारति जेसुक रखाय शाक शाकनो सिनि माइने अं हायिनकाय शाक साम लगना बेलाय कथगंनाय आफुरु कबर अंमानो कारै तंगलाक मुंसालामा मकल बसकांगो सियारि लगै तंगलाक सामु तंशा बोलामा तै कैसे कपलब निमो जरा निकरण जरा रक्त बुक जरा बैग दालिया खापं खुलुगुई कक रक साथक लिया शाना मसुंग खापं खा खुलुगुई लगी रे नाई बरक से करे तुम लगी रुई गाना तंग खापं खानो बुझी से करे जरा रक आस कैसे पंथांका नबार शिमा बो उल्टा से अंथांका ओसो ओसो खा कुई खा बांधी जगना मुचुंग खानो शेपें नई बरक से करे जरा रक्तबुक जरा बै गदलिया वांसुमा बै बक्सा नबार शिपलिया हारसा जाक मरान जाक कुआ बिशिंगो गलेगे तंजाक बनि बागै मोनामना बखागो लामा लामरो जाक जालाय बुलुंगो सातुं से नांगलिया आबोताय हाना से नुकलिया ताय कैसे कक्लब निमु खरां गरै सातुं खरां गरै सातुं अंगै दंथुचिनि हामजाकमा लोको कथुनि बिशिंगो नीलार दंमानि बिशिंगो नीलार न अंथु कतर तेर बबो बबो सैमान खे माया खारो हाक्सालो हुए तमानी बिशिंगो न तंगो कथार कथुक हमचाकमा हायम सिनिया फानो सिनि मानथु गनै बखा बेबाक साया तमानी बिशिंगो न हुइजाक तंगो कोबै नायथकमा किसा मिसा कक्रक तंथु कतन अंगै हुइजागै देब्रा खानी बिशिंगो जब जागै हुइ तन्मा आबो किरि माया आबो न अंगो गोबै साथारै खाति तन्मा बुनो फुनुक माओ गमाओ हालकनि गोबै नाय थकमा गोबै खानि सतन्मा जतन नुथु लगिरेमा खाकामा वानसुमा हुइ जागै तंथु खानि बिशिंगो इमां मुखथां सुनामानि बायथंगो बुइनो याबुइ गथार अंगै खरां गरै सातं अंगै ताइकैसे कक्लबनि मुं कायनि आयतर्मा नखा कतर्माओ कायनि आयतर्मा नायते नायते गमाउ थांका चुमुदै कबलै ब्यांग बोरिउइ आसेक्सन सासा पहर पिरसासा गाना गाना बसुक से मतांसा ताबुक तालपिरो सालबकासाओ नुक्लिया फियाबा बरकन पिरसामा सालबरम आं रुतुगै नायो खानो फलगै नायसिं नायो फियाबा हाइखेन गदग मा अंखा नाइसिमा आनी बेलाय हानसुखा बोले ताबुक बो पिरसा फाइलिया खाका मा आनी बायथां अंगलिया ताइ कैसे कक्लमनि मुं हाकचार आमा खानी बरकनि सुवारि सानै थांमानि आंले आमानि आरो खासुखसा खाबाय लामसगै बोले वातैनि खुम साहारै याक्षि यागोरा गोथार गोजांखाय लामसखा आनो लबै खाबाय सरिजाक बुखा गोथार बसाब वानसुखमा गोथार लबै सोनामनाय सानो हपं माइचाया हर खोरोंसा फुं आयबो सरिजाक अबखा खानि बरबनि हामारि सानै थांमानि आंले आमाबाय मालायना आमा लामसक जाकानो आमानि खुरिओ खाकजोंमा मानै खापंखा आनि बेलाय सिरांखा नआयै खरक याफा या गोदाल खुलुंखा आमानो हामारि मानमाबाय कसं बखा गोथार सात नायो आमा कसंखा आयं मासिंनि हामारि तंना आबागै आसुक गोरोंगै मानना खुलुमो आमा हाकचारमा नों मोथांनाय जतनि लांमा ताइकैसे कक्टबनि मुं जरा नांनाय हामदांमानि तैयंग' टुकुइ साकाओ कासामानि किसिसा सुकांनो ताबुक बबुसाकनि बाहाय गाबनानि जरालाय नांनाय नुथ

0: बुरै चु चुई आबुनी बिसिंबो बिनी आचु आचि कलाइनायनो कलाइनाय रक्नो खाबाय खुबायनोबो हामजा कगो इयां समतिनी बुचैनो नुखाय बरि थारै मा थांगो हामजाक मानि बरक बबनो आसुकनो माया खलायो रिथार जाकनानिबो ककनो माइतुगै चारिवै वाइं जेकेबै मुथुवै तनिउ आंबो नायतुगै से मा थांगो चेरायबा बियां आसुक बेराय तंखा हिनै बतेसा उमर किसा तंफुरु फानो नखला मायाम तग्रक नाय करै आसानो खेप नाय के खरकसा करै तामुनि आसुक बियाल कलायखा बासै कर्मटि साव छावै खनारिव बिनि नुखुंनि ककन बरक हिक सायनायनि थानि रांग्रि करै तंफानो बरक नले बिनि बोख्रा जग बोख्रा रक थानि माननानि तंगो बरक न मिलिग्रिनाय तंगो बारि खायनानि माइ बरनानि वानाना नांगिया जाय जाय खाय सावै बिति खलै अक्रा तंगो जरानि बोथाय जरावनो मानरिदिउ आइप्रिनि बुमा हाइनो हाय वानछुगु आनिबो आनि कराज करा फिसा खामिया सामुं टांमानिया फानो नगो टंमानि न टंमा थाइसाले क काहाम सावै टंगै मान खामुं टाबुक सग जरा गोथां टंखाय गोथां टंफुरनो जे माया खलायै टंनानि नांगौ हिन्तुं सातुं जे साफानो आबो थाइसा थाइसानो फानो खातैना ककसे गोरै बरगले आबो फोरोंमानिसि कक टाबुकसे अ कक न वानछुक नायो आफुरु साजागै फोरोंजागै फोरोंखाय खुनजौ केटक जागौ खोनाना मुचुंगिया टाबुकले नायतुक फानोसे ते बर' मानसि नाय अक खुरुमपुइ ककथायरकन आं नगो तंफुरु खायजे गेसोकां रों सोरोंगौ हिनै सामुं टांफानो आसु सामुंबो टांजागिया काटिं काटां खाय यगै थांगौ टांफुरु टांगो टांगियाफुरु टांगिया हामजोग फायसे आं आनि लांमानि गुबै लांमाव सफायो बाहायखे टंना बाहायखे बाखना बाहायखे संना सुखना आबो बेबाखनो बरकनि नुगै सोरोङै रोंखा बरकबो खुबाय फोरोंमाबो टंगो टाङै फोरोंमाबो टंगो आइजोगबो जावै माइमु संगै हगो थांगो थमाबो जाय नुगो बेबाक सामुं हुमुं पाइजाक माइखुरै जाना सिमिखाय कलां थांगो आंनि जि माइखुरै जाना फानोसे किसा फानो सामुं टाङिया गारै माइखुरै जाना लासि थेरे थेरे ओंगै थांगो साक साक आसुक दे बरक काहाम बरक बरकनि काहाम तंगै नुकमा बाय आं साक साकबो हामै मा थांगौ आबोसे तंनानि गोरैबा जोंनो खिबुयै थां पाइबायो बरकनिबो जाया नुया जं तारना सौयै फायफुरु थायामां हिनै माया आइफिरि आनि बिसि सिनि ओंखा बो आनो सालबुरुम बुरुम सों सोंगु आमा आनि आचो आचै बरक बरक ब्यां थांबाय हिनै आफुरु बनो सामा तंगु बरक दे नखा साखाव से सोंनो नायखिलाय तंगु सोंनो हामारि रिबै नों हिमै थोंगै दंफुरु ते नों रों सोरोंगै मानै दंफुरु बरक नन हामारि रिवै दंता आबनो नों आसुगता मिरिक दि बरक जाजागियांनायसे दमा अकक सामानि दंगो सालसा फातार हास्तेव थांनानै हिनै थांना बागै बिरखुं काफुरु न काफुरु खाय मुइतो मानजागु आइबिरि सोंगु आन कथमाबो सावरन पाइखा
1: आसुक जरा कक रुबाइनि पान्डाव खालामबाय क्या बायथां बैसिजा कथम अबसा सामानि सायखना रोगा शर्मिला देव बर्मा दाबो खालामबायनो जादुनि रोजाबमोन खरामवानो लक्षीपति देव बर्मा

आशिक जरा खाना भैया जादू नहीं रिचा मु रिचा भाई खनर का लक्ष्मीपति देव वर्मा आकाशवाणी अगरतला ओवन लगिन पैख्या तीन हरनी कबर पंदा जतन हर कहा

0: कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है।
0: पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं

किश्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से दो बड़े कदम

जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से दो बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।